0: Jai Shri Ram
1: Namah.

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। श्री मद्भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण गुप्त ईश्वरीय ज्ञान प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य समझने वाले मूढ़ हैं, मैं तो इस चराचर प्रकृति का सर्वस्व हूँ।

श्री गोविंद आश्वस्त करते हैं कि अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रत भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री भगवान अन्य देवताओं की तुलना में स्वयं श्री कृष्ण की उपासना के फल का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्रेम भाव से अर्पित पत्र, पुष्प, फल व जल स्वीकार करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन व मुझे ही नमस्कार करते हुए मेरे ही भक्त बनो।

0: ये पानी है। जीवन के लिए तीन अनिवार्य आवश्यकताओं हवा, पानी और अन्न में से एक।
1: नदियाँ पानी ढोती हैं और साथ ही साथ बाकी तीन जरूरतें भी पूरी करती हैं।
0: नदियाँ हवा शुद्ध करती हैं और अन्न पैदा करने में सहायक होती हैं।
1: इसीलिए हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी माँ के रूप में देखा गया है।
0: गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी से लेकर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तक सभी को पूजा गया है।
1: इन्हीं में से एक है बेतवा,
0: कलियुग की गंगा बेतवा,
1: परम पावन बेतवा।

0: चलो उर्मी।
1: मेघदूत के इस 24वें श्लोक में कालिदास ने बेतवा के जल में प्रिया के अधरों के स्पर्श का सुख देखा था। तो इसी बेतवा को मार्कंडेय ने कुछ ऐसे कहा कि
2: जब सृष्टि विलीन होगी तो बेतवा बाल मुकुंद के उदर में समा जाएगी।
1: महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा प्रकरण के 25वें अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर को बेतवा के तुंगारण क्षेत्र का महत्व समझाया, जहां

0: सरस्वत अंगिरा भृगु ऋषियों ने तपस्या की तथा लोक कल्याण के लिए अनेकों यज्ञ किए।
1: वामन पुराण में कार्तिकेय जब देव सेनापति का पद ग्रहण करते हैं तो बेतवा उन्हें श्वेतानंद प्रदान करती है।
0: वारह पुराण में बेतवा का अलग ही रंग है। इंद्र वरुण पुत्री प्रसंग में बेतवा मोहक मादक रूप में सामने आती है, तो पद्म पुराण में इसकी महिमा इन शब्दों में मंडित की गई है।

0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में झिरी बहेड़ा नामक स्थान से निकली बेतवा अपने उद्गम पर बूंद बूंद रिश्ते जल स्रोत की तरह दिखती है।
1: यहाँ आसपास के चरवाहे तक को ये पता नहीं कि यह किसी नदी का उद्गम है या यहाँ से कोई नदी भी निकली है।
2: हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ कोई नदी वदी नहीं है।
1: और विचित्र है कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर भोजपुर है, जहाँ यही बेतवा बहती हुई कलकल करती हुई दिखती है, जिसे वही चरवाहा अच्छी तरह जानता है।
2: हाँ जी, भोजपुर तो अच्छे से जानते हैं, वहाँ बेतवा भी है।
0: भोजपुर, मध्य भारत का सोमनाथ। यहाँ 2.3 मीटर ऊंचा तथा 5.49 मीटर घेरे वाला विशालतम शिवलिंग है।
1: यही वो पहला पुण्य स्थल है जिसे बेतवा ने अपने उद्गम से 16 किलोमीटर दूर जाकर सौंपा है।
0: विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पारियात पर्वत क्षेत्र जहां से बेतवा निकली है, वो स्थान समुद्र तट से 525 मीटर ऊंचाई पर है। पारियात पर्वत से निकलने के कारण बेतवा को पारियात पुत्री भी कहा गया है।
1: अलग अलग कारणों से इसके और भी कई नाम हैं। जैसे इसके किनारे बहुत सारे बेंत होते थे, इसलिए बेंतों वाली कहा गया। पहले इसकी धारा का बहाव बहुत तेज था, वेगवान था, इसलिए वेगवती कहा गया। वही बिगड़ते बिगड़ते वेत्रवती और अब बेतवा हो गया।
0: पुराण कथाओं में वृत्तासुर नामक दैत्य का उल्लेख मिलता है। पुराणकारों के अनुसार उसी ने महागंभीरा कुआ खोदा जिसमें से बेतवा प्रवाहित हुई।
1: कितना विचित्र है कि जिस नदी को दैत्य ने प्रवाहित किया वो लगातार लोक मंगल करती रही है, अपने तट पर संतों कलाकारों को जन्माया है, जैसे ओरछा के तुंगारण्य क्षेत्र में तुंग ऋषि।

0: बेतवा के किनारे हमीरपुर जिले में जिटकरी नामक स्थान है, जहां याज्ञवल्क ऋषि ने दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र की अनेकों अवधारणाएं रची।
1: बेतवा के ही तट पर चंडौत के च्यवन ऋषि ने अक्षुण यौवन तथा निरोग स्वास्थ्य का अमर रसायन च्यवन प्राश तैयार किया। इसी बेतवा के जल से उन्होंने कायाकल्प योग सिद्ध किया।
0: बेतवा के जल के औषधि गुण के बारे में जानकारी देते हुए ओरछा संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य श्री रामकृष्ण मिश्र,
2: यह बेतवती जम्बू वृक्षों के की जड़ों से स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें इसके किनारे अधिकांश जामुन के

0: पेड़ पाए जाते हैं। और यह जामुन के पेड़ से स्पर्श करके चलने वाला ये जो जल है, इस बेत्रवती में हवन की सामग्री में काम आने वाली औषधि जिसे गोंदरा कहते हैं, उस वह भी अधिकांश रूप में पाया जाता है। और ये दोनों वस्तुएं जम्बू मूल का रस और गोंदरा की जड़, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर त्वचा को साफ करने वाली और मानसिकता पर प्रभाव करने वाली औषधि का काम करती है।
1: बेत्रा के ही तट पर पाराशन में पाराशर ऋषि ने दीर्घकालीन साधना से मनुष्य के मोक्ष के साधन जुटाए। तो यहीं से थोड़ी दूर इंदल घाट ने इतिहास प्रसिद्ध चंदेल परमाल युद्ध देखा।
2: चल रहा नागदमन का जो

0: बेतवा तट का एक और गौरव।
1: बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल, जिनकी मुगल सेनापति सैयद गाजी से हुई युद्ध गाथा कोटरा की किंवदंती बन गई है।
0: इसी बेतवा के किनारे ओरछा में केशव ने हिंदी कविता को वो ऊंचाई दी जिसे सूर तुलसी के समकक्ष समझा गया।

0: वेगवती पेत्रवंती पेत्वा, झिरी बहेड़ा से झिरकर जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाती है।
1: अनेकों नदी नाले बेतवा को अपनी जल राशि सौंप कर उसे समृद्ध करते हैं।
0: और जल से समृद्ध हुई बेतवा आसपास के क्षेत्रों की पैदावार बढ़ाती हुई आगे ही आगे बढ़ती जाती है।
1: विस्तृत जानकारी देते हुए गंज बासोदा के जल संसाधन कार्यपालन यंत्री श्री राम सिंह दरबारी।
2: विदिशा में जो हलाली है जिसको आजकल सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं, ये बृहद परियोजना है और इससे बीसा जिले में 31,566 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर दो मध्यम परियोजना भी हैं, एक कैथन परियोजना है

0: जिससे 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और ये कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी नरेंद्र परियोजना है, ये भी मध्यम योजना है, इससे इस समय 2500 हेक्टर सिंचाई हो रही है और इसका रूपांकन क्षेत्र जो है वो 2800 और 27 हेक्टर करीब। यहाँ पर जो है 27 से लघु सिंचाई योजना है और 4 उद्वहन सिंचाई योजना है, और इन सब योजनाओं से 43,740 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और जिले का निरा जो बोया हुआ क्षेत्रफल जो है 5,17,928 हेक्टर है और इस जिले का अभी सिंचाई प्रतिशत जो है 8.83% है। सिंचाई योजनाओं के बनने के बाद में यहाँ की जिले की बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।
1: बेतवा पर कई छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो तो सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन के काम भी कर रहे हैं।
2: पारीछा बांध 1885 में बना था। उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर तथा जालौन और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तथा भिंड जिले इससे लाभान्वित होते हैं।
1: ढुकवा बांध 1909 में बना।
2: माता टीला बांध 1952 में बना।
1: इन बांधों के बारे में बताते हुए अधीक्षण अभियंता श्री बीएम पवार।
3: सन 1885 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारीछा जलाशय का निर्माण कर बेतवा नहर प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पारीछा जलाशय की क्षमता में योगदान देने के लिए सन 1909 में ढुकवा बांध निर्मित किया गया। यह योजनाएं उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन जिलों में सिंचाई की सीमित आवश्यकता पूरी करती थी। पहली बार सुनियोजित सिंचाई के लिए सन 1958 में उत्तर प्रदेश शासन ने माता टीला बांध बनाकर एक बहुउद्देशी परियोजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर प्रणाली के विस्तार और गुरसराय नहर प्रणाली के निर्माण तथा मध्य प्रदेश में भांडेर नहर प्रणाली से सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ।

0: राजघाट वर्तमान समय का विज्ञान तीर्थ है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर बन रही ये परियोजना बेतवा का वरदान है।
1: राजघाट परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए चंदेरी के अधीक्षण अभियंता श्री जीपी बिथारिया।
2: ये राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर एक राजघाट बांध का निर्माण हो रहा है, दोनों राज्यों के सहयोग से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो राज्य में जो नहरों का निर्माण है वो दोनों राज्य अपने अपने स्रोतों से कर रहे हैं। इसमें जो नहरें निकलती हैं तो बांध के बाएं तट से एक नहर निकलती है, LBC नहर। इसकी लंबाई करीब 84 किलोमीटर है और नीचे एक ढुकवा बांध है, वहां से दतिया करियर कनाल निकलेगी DCC, जिसकी लंबाई 49.50 किलोमीटर है। तो ये जो अपना बाएं तट नहर है, इससे जो डायरेक्ट इरीगेशन होगा ये 18,433 हेक्टर का होगा। और ये अपने जो दतिया करियर कैनाल है, इससे डायरेक्ट इरीगेशन तो कोई नहीं है, टीकमगढ़ में थोड़ा इरीगेशन है, 3,383 हेक्टर। बाकी इसका पानी जो है वो अंगूरी बैराज में डाला जाएगा। अंगूरी बैराज से पावर जनरेशन भी होगा करीब 6.5 मेगावाट, और फिर ये पानी दतिया इरीगेशन कैनाल में डाला जाएगा। तो ये दतिया इरीगेशन कैनाल है, इसकी लंबाई है करीब 31 किलोमीटर, और इससे जो इरीगेशन होगा वो 57,683 हेक्टर इरीगेशन होगा। ये होगा भिंड और दतिया जिले में। इसके साथ ही जो अपनी भांडेर नहर कैनाल है, इसका भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और ये करने के बाद 36

0: 1,083 हेक्टेयर और इरिगेशन होगा भिंड और दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 1,16,000 हेक्टेयर इरिगेशन होगा और इस योजना को वर्ष 1996 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
1: आधुनिक विकास यात्रा में बेतवा सांस्कृतिक जीवन की धरोहरों से सराबोर है।
2: बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा ही नहीं, सांस्कृतिक रेखा भी है।
1: बेतवा के किनारे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सांची है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री शिव कुमार जीव ने।
3: सांची का निर्माण सम्राट अशोक के समय से प्रारंभ होता है। उन्हीं के महान परिश्रम से इस स्थल का उत्थान निरंतर होते रहा और वह चमन के झूले झूलता रहा। यह स्थल विंध्य पर्वत शिखर पर लगभग 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दूर से अश्व के समान दिखाई देता है। सम्राट अशोक ने यहाँ चैत्यों, तोरणों, संघारामों, विहारों आदि का निर्माण किया। सांची की शिल्पकला भगवान बुद्ध के जीवन काल की चार विशेष घटनाओं से संबंधित है। ये घटनाएं हैं भगवान बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन गुप्तकालीन शिल्पकलाकारों ने मूर्तियों का निर्माण वास्तविकता पूर्ण ढंग से किया। सांची के मुख्य चैत्य द्वार पर ही एक विशाल एवं अप्रतिम स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मुख्य चैत्य में सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया तथा चैत्य नंबर 2 और 3 में भिक्षु सारिपुत्र एवं महामोग्गलायन के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखा गया।
1: देशभक्ति तथा स्वाभिमान का गुण बेतवा के पानी का स्थायी अंग बन चुका है।
2: जून 1924 में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने बेतवा के तट के घने जंगलों में शरण ली थी।
1: ओरछा से सटे गांव सातार के श्री गोविंद सिंह तोमर बताते हैं।
4: भगवान दास माहौर झांसी के हैं, वो भी नेताजी हैं। इनसे उनकी मुलाकात की, वो झांसी आए तो झांसी ने भी उनका मकान घेर लिया। जब पुलिस ने मकान घेर लिया तो जनानी भेज करके भागते भागते अब उनने का जंगल है, तो रेलवे लाइन की लेके और फिर ओरछा चले गए सीधे।
1: 12 अप्रैल 1930 जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी दिन झांसी से भी सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई थी और बेतवा के कछार में लोना मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था।
2: धार्मिक समभाव तथा सहिष्णुता के दृष्टिकोण से बेतवा की यात्रा अद्भुत समन्वय बिखेरती है।
1: बेतवा के ही किनारे देवगढ़ है, जो हिंदू जैन संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है।
2: ओरछा मध्य भारत की अयोध्या है। बेतवा तट पर बसी ये पुण्य नगरी स्वयं में संस्कार तथा साहित्य संस्कृति का अपूर्व उदाहरण है।
1: यहाँ के राम राजा मंदिर के सेवक से लक्ष्मण सिंह गौर बताते हैं।
5: 1631 बिक्रमी में तुलसीदास जी ने रामायण जी की रचना की है। इसी दिन उसी नक्षत्र में भगवान यहाँ वो अयोध्या से ओरछा आए हैं। मत्कोसा महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा ले आई अवर नदी।
1: बेतवा तट पर शांडिल्य ऋषि की साधना स्थली जलालपुर है। इसी के पास रिडुआ नामक स्थान है, जो जैन प्रमुख ऋषभ देव की साधना स्थली रहा है।
2: सैदनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ कितने ही मंदिर मस्जिद आसपास बने हैं। यहाँ शंख ध्वनि के साथ पूजा आरती भी होती है, अजान भी होती है। इसे सिद्ध नगर भी कहते हैं। रक्तदंता मारण मोहन की सिद्ध स्थली है सैदनगर।
1: जहाँ दुर्भाग्य से कुछ नदियाँ अपनी भौगोलिक संरचना के कारण कई समस्याएं पैदा करती हैं, वहीं बेतवा अपने उद्गम से यमुना में समागम तक 304 किलोमीटर की यात्रा में केवल प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, उत्साह और देश प्रेम बांटती है। यहाँ तक कि इसके आसपास कई समस्याओं के निदान भी खोजे गए हैं।
2: जैसे मुगावली 1977 में जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सैकड़ों डाकू ने आत्मसमर्पण किया, तो उन्हें सुधारने के लिए मुंगावली की खुली जेल में रखा गया था।
1: मुंगावली जेल के सहायक जेलर श्री आर आर रॉय का कहना है,
6: देखिए मुंगाली में जो

0: खुली जेल खोली गई। इसके पीछे सन 1973 में जब चंबल के आत्मसमर्पित डाकुओं ने जयप्रकाश के सामने आत्मसमर्पण किया तो उनको समाज की मुख्य धारा में पुनः सम्मिलित करने हेतु और उनकी विशेष मांग पे उस खुली जेल की स्थापना 1973 में की गई। दूसरी जेलों में यदि उनका चाल चलन अच्छा रहा है, उनकी केस हिस्ट्री कोई वो पेशेवर हत्यारा न हो इस तरह का रहा हो, तो आजकल इसी आधार पर खुली जेल में कैदी भेजे जाते हैं।
1: बेतवा का संपूर्ण क्षेत्र सस्य श्यामला की वनस्पतिक अनुभूति है। अनगिन पेड़ पौधे, वन जंगल इसके तटों पर फैले पड़े हैं,
2: जैसे सागौन, शीशम, धौ, साज, तेंदू, महुआ, नीम, बबूल,
1: आम, जामुन, आंवला, उमर, अचार, बेर, मकोरा, बेल, नींबू और करौंदा।
2: बेतवा के उपजाऊ क्षेत्र में अमरूद, संतरा, मौसम्बी, कटहल, सीताफल, अंगूर इत्यादि भी पैदा किए जाते हैं।
1: इसकी जमीन में कच्चे होने पर खट्टे लगने वाले तथा पकने पर मीठे लगने वाले फल खासकर अच्छी पैदावार देते हैं।
2: आयुर्वेद के लिए बेतवा घाटी वरदान है। आयुर्वेद में उपयोग के लिए पौधों की लंबी लंबी श्रृंखला है।
1: अर्जुन, अशोक,
2: कचनार, अमलतास,
1: खैर, बकायन,
2: बहेड़ा, बिलवादी जैसे बड़े वृक्षों के अलावा शंखाहुली, नागरमोथा, कष्टकारी,
1: केवंश बीज, भारंगी, गोखरू,
2: उदयफूल, नाय, इंदौस,
1: बच्ची, नरगुंडी, इंद्रजौ,
2: आक, धतूरा, जवासा
1: और हरजरू, इमलौसा, फूलकट जैसे छोटे पौधे भी हैं।
2: विकास के क्रम में हमारे बीच से ये सुख धीरे धीरे घट रहा है। कभी बेतवा के पास घने जंगल थे, पर अब सब क्षीण होता जा रहा है।
1: पर हाँ, उम्मीद बाकी है, क्योंकि आज भी जब सिरीप, दुधी, काक, कदम की फूलने के दिन आते हैं तो बेतवा रंग और गंध से भर उठती है।
2: रंग गंध की झलक हमें ये विश्वास दिलाती है कि आज बेतवा अपने अतीत के सांस्कृतिक, कलात्मक, धार्मिक, वानस्पतिक वैभव तथा आधुनिक विकास के संक्रमण पर जहाँ खड़ी है, वहां से आगे भी वो बीच का रास्ता निकाल ही लेगी। लेकिन इसके लिए हमें मंडीदीप और विदिशा में हो रहे औद्योगिक विकास से उत्पन्न संभावित खतरों को पहले जांच लेना होगा।
1: इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के वरिष्ठ शोध अधिकारी डॉक्टर एस एम मिश्रा।
3: औद्योगिक प्रदूषण यहाँ पर कुछ स्थानों पर अधिक पाया गया है, जिसमें एक मंडीदीप और दूसरा विदिशा है। यदि कहा जाए कि प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यह तो कहना असत्य होगा। लेकिन यदि हम इनमें में से इन समस्याओं से ऊपर उठ करके नदी का एकीकृत योजना शुरू से प्रारंभ से, जहाँ से कि नदी अपना स्वरूप लेती है वहाँ से और अंत तक हमीरपुर में मिलने के पूर्व तक अगर पूरी योजना बनाई जाए तो शायद

0: नहीं किया जा सकता, यह तो कहना असत्य होगा। लेकिन यदि हम इनमें में से इन समस्याओं से ऊपर उठ करके नदी का एकीकृत योजना शुरू से प्रारंभ से जहाँ से कि नदी अपना स्वरूप लेती है वहाँ से और अंत तक हमीरपुर में मिलने के पूर्व तक अगर पूरी योजना बनाई जाए तो शायद यह संभव है कि हम अपने इन प्रयासों के कारण इस नदी को प्रदूषण से बचा सकते हैं।
1: एक आदर्श उद्योग भी बेतवा के किनारे अपनी पृथक पहचान बनाए हुए है।
2: ये है चंदेरी का हथकरघा उद्योग।

0: बेतवाने हमें सूर्यकांत मणि, सुलेमानी पत्थर, गोमेदक, दूधिया पत्थर तथा बिल्लोर जैसे नगीने भी दिए हैं। हमें भी सोचना है हमारे पास क्या है बेतवा को देने के लिए।
1: भ्रम न हो न संशय, क्योंकि भ्रम अंततः ऐसी चूक में बदल जाते हैं जिन्हें ठीक कर पाना संभव नहीं होता।
0: जैसे बेतवा धसान संगम पर दशरथ को हुआ था, जल भरते श्रवण को मृत के भ्रम में बाण से मार डाला था।
1: इसीलिए हमें अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी होगी
0: और अक्षुण्ण रखनी होगी। खिरी बहेड़ा से पत्योरा तक बेतवा की स्थायी संस्कृति,
1: खिरी बहेड़ा से भोजपुर,
0: रायसेन,
1: सांची,
0: विदिशा,
1: गंज बासौदा,
0: राजघाट,
1: बसई,
0: माता टीला,
1: ओरछा,
0: हमीरपुर होते हुए
1: अपने संपूर्ण क्षेत्र को सींचती, संपन्न बनाती, सुसंस्कृत करती बेतवा अपने अभीष्ट को पत्योरा में प्राप्त करती है।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

भवभंजन भवभंजन

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: कि दैत्यों के कट्टर धर्माचरण ने देवताओं को चिंता में डाल दिया। दैत्यों के धर्म का नाश हुए बिना उनका विनाश असंभव था। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से यति की उत्पत्ति की। उसे आदेश दिया कि वो जाकर दैत्य लोक में नास्तिक धर्म का प्रचार करे। नारद मुनि की सहायता से यति ने यही किया। यति की लुभाने वाली बातों में आकर दैत्यों ने नास्तिक धर्म अपना लिया। अब उनके विनाश का मार्ग खुल गया था। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूद जी, कितने अचरज की बात है, देवताओं को भी अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
2: मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तीनों महाप्रभु ब्रह्मा विष्णु और महेश सुरों असुरों और मानवों में भेद नहीं रखते, ना दंड देने में ना वरदान देने में। हाँ, उचित समय की प्रतीक्षा अवश्य करते हैं।
1: परंतु क्यों सूत जी, जब सब कुछ उन्हीं के हाथों में है तो प्रतीक्षा क्यों?
2: शौनक जी, समय की भी एक मर्यादा होती है। असमय किए गए कार्य के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कामदेव ने महाप्रभु की तपस्या असमय भंग करने का प्रयास किया, क्या परिणाम हुआ? भगवान की क्रोधाग्नि ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। यही नहीं, हर युग में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे।
1: महाभाग, तो अब जब त्रिपुरासुर के अंत का समय आ गया था, तब काल चक्र ने क्या गति ली?
2: महाज्ञानी शौनक जी, सभी देवता एक बार फिर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में महामहिम शिव शंकर की शरण में गए।
3: ब्रह्मा जी, मैं देवताओं के मन की बात भली भांति जानता हूं। ये भी जानता हूं कि त्रिपुरवासी अधर्मी हो गए हैं, परंतु वे महादैत्य मेरे अनन्य भक्त थे। आज भी उनके मन में मेरे प्रति भक्ति भाव बचा हुआ है।
4: परंतु देव देवेश, वे सभी नास्तिक धर्म में लिप्त हो चुके हैं।
3: ब्रह्मा जी, उन्होंने श्री विष्णु की माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः भगवान विष्णु ही उनका वध क्यों नहीं करते?
5: दयानिधान, दैत्यों का धर्म नष्ट करने के उद्देश्य से देवताओं को आप ही ने तो मेरे पास भेजा था।
4: हे कृपा सिंधु भगवान शंकर, मैं श्री विष्णु सभी सुर असुर मानव आपकी प्रजा हैं। हरि आपके युवराज हैं, मैं पुरोहित, इंद्र आपके मंत्री हैं, हम सभी आपके अधीन हैं, आप हमारे सम्राट हैं। प्रजा पर जब भी संकट आता है तो राजा ही उस संकट का निवारण करता है।
3: कैसा सम्राट है ये आपका, जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं किया, और करे भी कैसे, ना उसके पास सेना है, ना युद्ध वाहन, ना अस्त्र, ना शस्त्र और ना आयुध। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा?
5: देवाधिदेव, आप युद्ध के लिए तत्पर तो हो, हम सब प्रबंध कर देंगे। हाँ? अरे ये क्या, प्रभु शिव तो मौन हो गए।
6: इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है अग्निदेव।
7: वो क्या देव राजेंद्र?
6: देवाधिदेव हमारे प्रस्ताव से सहमत नहीं है।
7: हाँ, और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मात्र शिव शंकर ही त्रिपुरासुर का वध कर सकते हैं।
6: अब ये तो
4: शांत हो जाइए देवगण, दुखी होने से हमें अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो।

0: उपाय की कोई उपाय सोचना होगा।
1: देवगण, शिव परमेश्वर हैं, आशुतोष हैं, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कीजिए, पहले ओम का उच्चारण कर नमः शब्द का प्रयोग करें, इसके पश्चात एक बार शिवाय, फिर दो बार शुभम और दो बार कुरु शब्दों का प्रयोग करें, अंत में शिवाय नमः ओम जोड़ दें। इस प्रकार मंत्र बनता है

0: इस मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करने से महाप्रभो अवश्य प्रसन्न होंगे।
1: जैसी आपकी आज्ञा श्री विष्णु हरे।

0: अरे आकाश में यह कैसा विचित्र मंत्र गूंज रहा है, इससे तो पूरा त्रिपुर कंपित हुआ जा रहा है।
1: दैत्य माता, सब प्राणी विचलित होकर इधर उधर दौड़े जा रहे हैं,
2: मेघ घनघोर गर्जन कर रहे हैं,
3: त्रिपुर की अट्टालिकाएं ध्वस्त हो रही हैं।
0: अवश्य ही दुष्ट देवता शिव का आह्वान कर रहे हैं।
1: तो क्या ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त 1,000 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है?
0: प्रपौत्र तारकाक्ष, तो इसमें विचलित होने की क्या बात है? इन 1,000 वर्षों में तुम्हारा बल कितना अधिक बढ़ चुका है। अब तो शिव में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। तुमने ब्रह्मा से वरदान ही ऐसे प्राप्त किए हैं पुत्र।
2: दैत्य माता, वरदान तो हमारे पिता तारक ने भी ऐसा ही प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु असंभव प्रतीत हो रही थी।
0: प्रपौत्र विद्युन्माली, तारक की मृत्यु असंभव प्रतीत हो रही थी, परंतु तुम तीनों की मृत्यु असंभव है। तुम्हारा यह त्रिपुर देवताओं द्वारा अभेद्य है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता।
3: उनके पास दिव्य दृष्टि है दैत्य माता। वैसे भी वरदान के अनुसार अब ये नगर एक होकर उन्हें दिखाई देने लगेंगे।
0: दिव्य दृष्टि हो सकती है कमलाक्ष, परंतु ऐसा दिव्य बाण नहीं है जो एक ही मार से 1,000 योजन बड़े इस त्रिपुर को भेद सके।
1: दैत्य माता, हम शिव की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते, उनके लिए क्या संभव नहीं है?
2: यदि हम उनकी आराधना पूजा में लीन रहते तो।
1: विद्युन्माली, अतीत का स्मरण कर अपने मनोबल को क्षीण ना करो। यदि युद्ध होगा तो अवश्य होगा। हम कितने भी अभेद्य क्यों ना हों, अपनी रक्षा के प्रयास तो करने ही होंगे। सेनापति,
3: आज्ञा दैत्यराज तारकाक्ष।
1: त्रिपुर के सभी द्वार बंद करवा दो और सेना को सतर्क रहने का आदेश दो।
3: जो आज्ञा दैत्यराज।
1: आओ अनुजो, आओ, हम भी तारक वंश की नियति की

0: हे देवताओं, हम आपकी स्तुति से प्रसन्न हुए। हम तारक वंश को उसकी नियति तक पहुंचाने के लिए अपने को प्रस्तुत करते हैं।
1: हम धन्य हुए महादेव, हम धन्य हुए।
0: हे विश्वकर्मा,
2: आज्ञा महासंहारक।
0: युद्ध वाहन के रूप में आप एक दिव्य रथ का निर्माण करें। उसके दाहिने चक्र में सूर्य अश्व हो। वो सभी ऐसे संसाधनों से युक्त हों जो त्रिपुरासुर के नाश के लिए आवश्यक हों।
3: मैं ब्रह्मा देवाधिदेव के इस रथ का सारथी बनूंगा।
4: मैं विष्णु महादेव का त्रिपुर भेदी वाण बनूंगा।
5: और मैं अग्नि उस वाण की नोक।
3: हिमवान महाप्रभु का धनुष बने।
0: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवतागण, हमारे इस अनुष्ठान में एक अवरोध अभी शेष है।
3: वो क्या भगवान?
0: विधात, असुरों की पाश्विक शक्ति का नाश करने के लिए हमारे पास भी पाश्विक शक्ति होनी चाहिए।
4: इसके लिए हमें क्या करना होगा देवाधिदेव?
0: आप देवगण ब्रह्मांड में विचरने वाले पशुओं का स्मरण करें, फिर उनका रूप धारण करके मुझे अपना अधिपति बनाएं, तभी मैं उन दानवों का वध कर पाऊंगा।
2: अरे अग्निदेव, महाप्रभु ने ये क्या मांग लिया?
4: हम पशु बन जाएं इंद्रदेव?
1: देवता और पशु, ये
0: देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 या 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत धारण कर मेरी सेवा करेगा, वो प्राणी पशुत्व से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। परंतु इस समय ये पाश्विक शक्ति अत्यंत आवश्यक है।
3: देवगण, इसमें इतना विचारणीय क्या है? ये सर्वेश्वर की आज्ञा है।
1: तथेति, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
6: पशुपति महादेव शंकर की
1: जय।
6: देवाधिदेव की
1: जय।
6: त्रिपुरासुर विनाशक की
1: जय।
0: देवताओं, शिवगणों, प्रस्थान।

0: देवाधिदेव, वो देखिए, वो त्रिपुर, हमारे वरदान के कारण वो एक हो गया है। उसे घेरे मेघ हट रहे हैं। त्रिपुर अब दृष्टिगोचर हो रहा है।
1: विद्युन्माली, देवसेना आ पहुंची है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे त्रिपुर को देख पा रहे हैं।
2: भ्राता तारकाक्ष, भले ही त्रिदेव हमें देख पा रहे हो, अन्य देवता तो नहीं देख पा रहे, उन पर आक्रमण करें।
1: सेनापति, आक्रमण!
3: देवाधिदेव, दैत्यों ने देव सेना पर आक्रमण कर दिया है। मैं आपका वाण त्रिपुर को भस्म करने

0: के लिए तत्पर हूँ।
1: परंतु ये क्या विष्णु हरे, हमसे ये प्रत्यंचा क्यों नहीं चढ़ पा रही? हम जड़ कैसे हो गए?
2: हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर,
0: ये आकाशवाणी कैसी?
2: आप ही ने पुत्र गणेश को अग्र पूज्य बनाया है। महा अनुष्ठान से पूर्व आपने उनकी पूजा नहीं की है, ऐसे में आप त्रिपुर का संहार कैसे कर पाएंगे?
1: ये तो हमें स्मरण ही नहीं रहा। गणपति नमः। गणपति नमः। गणपति नमः। गणपति नमः।
3: हे त्रिपुरवासियों, हम शिव तुम्हारा संहार करने को आए हैं, सावधान।
4: हे देवादिदेव, मैं तारक पुत्र तारकाक्ष जानता हूं कि आपके समक्ष मेरी विजय संभव नहीं, परंतु वंश परंपरा चलाते हुए मैं आपसे युद्ध करने को बाध्य हूं।
3: हे तारकाक्ष, हे विद्युन्माली, हे कमलाक्ष, हम जानते हैं कि तुम धर्म से विमुख हो चुके हो, परंतु तुम्हारी पूर्व की भक्ति से हम आज भी प्रसन्न हैं। जीवन के अतिरिक्त कुछ और वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे।
4: महाप्रभो, आप हम तीनों भ्राताओं पर प्रसन्न हैं, ये जानकर हम धन्य हुए। हमें आपके हाथों दग्ध होना ही है। भगवान, जो मृत्यु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो हमें प्राप्त होने जा रही है।
5: दया निधान हमें वरदान दे, अब से हम जो जो भी योनि धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी ही भक्ति में लगी रहे।
3: तथास्तु तारक पुत्रों। हे त्रिपुरवासियों, अब हम अपने दिव्य वाण से त्रिपुर भेदने जा रहे हैं। इससे समस्त तारक वंश का नाश हो जाएगा। हमारे वाण की अग्नि से वही बच पाएगा जो अब भी हृदय से हमारी वंदना करता है।
0: महादेव ने अपने एक ही वाण से त्रिपुर को दग्ध कर दिया है लक्ष्मीपति।
6: हाँ विधाय, तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष समेत सभी दैत्य तुरंत भस्म हो राख का ढेर बन गए हैं। समस्त तारक वंश का अंत हो गया है।

0: परंतु नारायण ये इस प्रलयंकारी अग्नि से बचा कौन व्यक्ति इस ओर चला आ रहा है?
1: हाँ? ये तो असुरों का विश्वकर्मा मैं दानव है जिसने त्रिपुर का निर्माण किया था।
2: दानव श्रेष्ठ मैं, तूने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरी भक्ति नहीं त्यागी। विष्णु जी का यति भी तुझे मोहित नहीं कर पाया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मांग, मनवांछित वर मांग।
3: हे दयानिधान, मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मैं सदा आपके भक्तों का मित्र रहूं। दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे। अन्याय तथा दुष्ट प्राणी मुझसे दूर रहे। मुझ में कभी आसुर भाव का उदय ना हो। मैं आपके भजन पूजन में तल्लीन निर्भय बना रहूं प्रभु।
2: हे मैं, तू मेरा भक्त है। तेरे हृदय में कोई विकार नहीं। जा, तू मेरी आज्ञा से परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वो स्थान स्वर्ग से भी रमणीक है। वहां तू निर्भय होकर रह सकता है और मेरा भजन पूजन कर सकता है। तुझ में कभी आसुरी प्रवृत्तियां नहीं जागेंगी।
3: मैं धन्य हुआ देवाधिदेव, मैं धन्य हुआ देवाधिदेव, मैं धन्य हुआ।

0: देवताओं, आपका यह अनुष्ठान हमने पूर्ण किया। आप सब निर्भय होकर अपने धामों को जाएं, हम भी कैलाश पर जाते हैं।
1: देवाधिदेव, एक अंतिम अनुनय है।
0: कहिए ब्रह्मदेव, हमने कभी आपकी विनती नहीं टाली है।
1: महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें अपना दास समझकर वर दें। देवताओं पर जब जब दुखों की संभावना हो, तब तब आप प्रकट हो, हमारे दुख मिटाते रहें।
0: विधात सदा ऐसा ही होगा।

0: से नाश करवाकर तुमने संपूर्ण असुर वर्ग का ही अंत कर डाला है। मैं कश्यप पत्नी दिति प्रण लेती हूँ, जहाँ भी जिस भी रूप में होंगी, मैं देवताओं को सुखी जीवन व्यतीत नहीं करने दूंगी। अपनी पूरी क्षमता से भावी असुरों को प्रेरित करती रहूंगी। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। यह तुम्हारी ही शिक्षा है देवताओं।
1: महाज्ञानी शौनक जी, शीघ्र ही दैत्य माता दिति की आत्मा की ये भविष्यवाणी भी पूर्ण होना आरंभ हो गई।
2: वो कैसे महाभाग सूत जी?
1: दैत्य वंश के क्षितिज पर एक नवीन असुर का उदय होना आरंभ हुआ।
2: महाभाग, ये नया असुर कौन था, तथा क्या वो भी तारक वंश का ही था?
1: नहीं शौनक जी, ये नया दैत्य तारक वंश का नहीं, अपितु स्वयं देवाधिदेव की उत्पत्ति था।
2: स्वयं महादेव की उत्पत्ति?
1: हाँ शौनक जी, इसका नाम जलंधर था। परंतु
2: अब परंतु क्या महाभाग?
1: जलंधर की उत्पत्ति की कथा मैं अपनी अगली भेंट में सुनाऊंगा।
2: जैसी आपकी इच्छा सूत जी।
3: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के पांचवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक चली गई थी।

¡Arriba!

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

सुन रहे सी पंजाबी फिल्म संगीत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलते हैं, जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की सातवीं कड़ी।

0: आत्मशक्ति को राम नाम का भरोसा बार बार देकर पवन सुत ने घोर गर्जना की और हवा में उछल पड़े। उनके चरणों की धमक से वो पहाड़ तुरंत पाताल में धस गया। परम भक्त योगीश्वर पवन तनय योग शक्ति से अपना भार संभाल कर निरंतर उड़े चले जा रहे थे। उनके साहस पर रीछ कर समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा,
1: हे पर्वतराज, तुम उठकर वायुनंदन को अपना आधार दो।
2: सुंदर प्रस्ताव है महासागर, लो मैं उठता हूं। हे रामदूत महावीर, तुम्हारी असीम भक्ति और शक्ति को धन्य है। आओ क्षण भर मेरे ऊपर रुक कर विश्राम कर लो, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।
3: मेरी दया विचारने वाले पर्वत शिरोमणि, आपको प्रणाम है। आपके प्रेमपूर्ण निमंत्रण का मान रखने के लिए ये लीजिए, मैं अपने हाथ को क्षण भर के लिए टिकाए लेता हूं। किंतु पर्वतराज, राम काज कीन्हे बिना मोही कहां विश्राम।
2: हे वज्रांग, तुम्हें धन्य है, प्रभु कृपा से तुम्हें अपने कार्य में निश्चय ही सिद्धि मिलेगी।

0: ये वानर निश्चय ही परम साहसी और वीर है। देखो वायु तरंगों पर कैसे उड़े जा रहे हैं। परंतु जिसके पुत्र ने देवराज इंद्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और सारे देवगण जिस दशानन से थरथर कांपते हैं, क्या उसके सम्मुख भी ये ऐसी वीरता दिखा सकेंगे? क्या ये रामदूत बनने के सचमुच योग्य हैं?
1: उचित है कि हम सर्पों की माता सुरसा देवी से इस बानर की परीक्षा लेने के लिए गए।
0: ठीक कहा, आओ चले
1: चले। हे माता, प्रभु का दूत बनकर एक बानर लंका जा रहा है, क्या तुम उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकोगी?
2: अवश्य, मैं अभी जाती हूँ। आज सुरन मोहे दीन आहारा।
3: हे यही जननी सुरसा माता, दया करो, राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभु ही सुनावूं, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मुझ जान दे माई।
2: नहीं, मैं तुझे यहां से एक डग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तू मेरा आहार है।
3: हे माता, मेरा विश्वास करो, जगदम्बा सीता की खोज करके मैं रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार दे आऊं, तब तुम मुझे खा जाना।
2: नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अभी के अभी लील जाऊंगी, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगी।
3: यदि ऐसा भी है तो फिर देर क्यों करती हो, खा क्यों नहीं लेती मुझे?
4: सुरसा ने अपना विकराल मुख योजन लंबा फैला लिया, मैं भी तो योजन लंबा हुआ जाता हूँ। जैसे जैसे तू अपना मुख फैलाती जाएगी, मैं भी अपनी देह विशाल करता जाऊंगा।
3: नाग माता अब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, इसलिए क्यों ना मैं इसकी विशाल मुख में लघु रूप धर कर घुस जाऊं और इस प्रकार नाग माता की इच्छा पूरी करके चटपट अपने रास्ते लगूं।
2: अरे हनुमान ने तो बड़ी चतुराई की, कितना छोटा रूप बनाकर इसने विद्युत गति से मेरे मुख में प्रवेश किया और एक चक्कर लगाकर बाहर भी आ गया।
3: हे माता, मैंने तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य किया, अब कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दो।
2: हे अंजनी कुमार, रावण के भय से सदा कांपने वाले देवगण तुम्हारे बुद्धि बल को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहते थे, तुम उस कसौटी पर खरे उतरे। मोह सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्ध बल मर्म तोर मैं पावा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान।
5: नाग माता के आशीर्वचनों को विनीत भाव से ग्रहण कर हृदय में राम का ध्यान करके पवनसुत बड़े वेग से उड़े। समुद्र के ऊपर से जाते हुए उन्हें छायाग्राही राक्षस मिला। राक्षस ने एक बड़ा आहार उड़ते हुए देखा, उसने लपक कर मारुति की छाया पकड़ ली। पवन कुमार ने अपने मार्ग में आई हुई ये छोटी सी बाधा क्षण मात्र में ही दूर कर दी। पवनसुत समुद्र पार करके सीधे लंका पहुंच गए। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका नगर का अवलोकन किया।

0: राजधानी की सुरक्षा के निमित्त कड़े पहरे का प्रबंध देखकर कपींद्र केसरी किशोर छोटे से मच्छर के समान सूक्ष्म आकार धारण करके चतुराई से रावण की नगरी में प्रवेश करने चले और सब पहरेदारों की दृष्टि तो चूक गई, किंतु द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसकी ऐसी माया थी कि कोई चोर उससे छिप नहीं सकता था। राक्षसी ने उन्हें आकाश में ही घेरा और बोली,
1: जा नहीं नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
2: अच्छा हुआ अपने पाप का फल भुगतती लंकनी लहू गिराती हुई धरती पर लुढ़कती हुई गिर पड़ी।
1: हे महावीर, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे यही चिन्ह बतलाया था कि बंदर के मारने से जब तू व्याकुल हो उठे तब समझ लेना कि लंका का नाश निकट आ गया है। अब मैं धन्य हुई, तात प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।

0: मैं धन्य हुई। तात प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौसलपुर राजा।
1: लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा।
2: राम राम श्री राम श्री राम।
1: अरे
2: श्री राम,
1: ये तो सज्जन है।
2: श्री राम,
1: इससे जान पहचान करनी चाहिए।
2: राम राम।
1: अच्छा, तो विप्र का रूप धारण कर इससे मिलता हूँ। हे भगवत भक्त, अपने द्वार पर खड़े विप्र को देखो।
2: विप्रवर, विप्रवर अपना वृत्तांत तो मुझसे कहें। आपको देखते ही मेरे मन में प्रबल आनंद तरंगे उठ रही हैं। क्या आप भगवान के सेवकों में से कोई विभूति हैं? क्या आप दीन जनों के प्रेमी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और मुझ अकिंचन को बड़भागी बनाने के लिए स्वयं इतना कष्ट करके पधारे हैं? बोलिए बोलिए भगवान, बोलिए आप कौन हैं?
1: मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री राम जी की आज्ञा से भगवती सीता की खोज में यहाँ आया हूँ।
2: हे पवन सुत, अब दया करके हमारी रहनी भी सुनिए। जैसे दांतों में जीभ बेचारी रहती है, वैसे ही हमारा निभाव होता है। हे तात, कभी न कभी तो रामचंद्र जी मुझ अनाथ की भी सुधि लेंगे, मेरा भी उद्धार होगा।
1: भक्तराज विभीषण, मैं तो वानर कुल में जन्मा, प्रकृति से चंचल और सब प्रकार से दीन हूँ। भोर के समय जो हमारा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। जब मेरे समान अधम पर भी श्री रामचंद्र जी कृपाल हुए, तब आपकी पुकार पर भी दौड़े आएंगे। अब ये बतलाइए भक्तराज, क्या जगदम्बा सीता जी लंका में हैं?
2: हाँ, यही है।
1: मैं पूरी लंका छान आया, किंतु मुझे उनके कहीं दर्शन नहीं हो सके।
2: वे अशोक वन में है।
1: साधु साधु, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, पता पा जाने पर माता के दर्शन किए बिना आप मुझे चैन नहीं।
3: नाना कौतुक करते हुए कपींद्र अशोक वन जा पहुंचे। कौशल पूर्वक धीरे धीरे वे उस वृक्ष पर पहुंच गए जिसके नीचे जगदम्बा विराजमान थी। हनुमान जी ने देखा, ऐसी गहन करुणा में भी वे राम चरण लीन थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करूं का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सीते समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
4: सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पनमोरा, एक बार बिलो की ममोरा।
5: रे नीच रावण, क्या तूने कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमलिनी को खिलते देखा है? वो सूर्य से ही संभव है। रे दुष्ट दशमुख, तुझे अभी रामचंद्र जी के बाणों का पता नहीं है। सठ सू नहीं हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही।
4: सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अभी तलवार से तेरा शीश काट कर इस लीला का अंत ही किए देता हूं।
5: ये तो तू मेरे मन की बात कह रहा है, मैं तुरंत इस संकट से उभर जाऊंगी।
4: सूर्यवंशी राम में भला ऐसी कौन सी विशेषता है जो पुलस्त्यवंशी मुझ दशानन रावण में नहीं है?
5: सुनेगा रे नीच तो सुन। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा।

0: चन्द्रहासहरु मम परितापम् रघुपति विरह अनल संजातम् फुलस्तय के समान श्रेष्ठ ऋषिकुल को अपने कुकर्मों से कलंकित करने वाले रे दुरात्मा विश्वास रख, मेरा वचन निरर्थक न जाएगा। एक दिन मेरे स्वामी तुम्हारे इन सभी शीशों को एक ही बार में उतार डालेंगे।
1: मैं अभी तेरा अंत किए देता हूँ।
2: हे नाथ, समस्त जगत के स्वामी, आप जैसे अजय योद्धा हैं, वैसे ही महापंडित भी हैं। दासी मंदोत्री की प्रार्थना स्वीकार करें, पर स्त्री की हत्या करना नीति विरुद्ध है। हे नाथ, ऐसा ना करें।
1: ठीक है, ठीक है। सीता, तुझे एक मास और सोचने का अवसर देता हूं।
3: बहनों, मैंने कल रात एक सपना देखा है।
4: क्या देखा सपने में तूने त्रिजटा?
3: मैंने देखा है कि एक बंदर ने आकर लंका को जला डाला है। राक्षस सब मारे गए हैं और हमारे मालिक रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं। उनका मस्तक मुंडा हुआ है और बीसों हाथ कटे हुए हैं।
4: अरे सच?
3: अरे झूठ थोड़े ही कह रही हूँ। फिर मैंने देखा कि नगर में रामचंद्र जी के नाम की दुहाई फिर रही है और वो सीता जी को साथ लेकर तथा यहाँ का राज विभीषण को देकर चले गए। फिर मेरी नींद टूट गई। भोर का सपना था बहन। तुम सब जानती हो कि मेरे मन में ना तो किसी प्रकार का छल है, ना कपट और ना स्वामी भक्ति में ही मैं किसी से पीछे हूँ। पर बात तो कही जाएगी। मेरा मन कहता है कि स्वामी ने सीता जी का हरण करके अपना भला नहीं किया।
4: हम तो निर्बुद्धि हैं त्रिजटा, जैसा मालिक ने कहा वैसा कर दिया। पर तुम जो सपने की बात सुना रही हो, उससे हम सबके मन में बड़ा भय समा गया है।
5: ठीक बात है
4: त्रिजटा, तुम ही उपाय बताओ बहन। ऐसे में हमें क्या करना उचित होगा?
3: मेरी जान में दंड देने योग्य किसी ना किसी भयंकर खोज का बहाना करके तुम लोग इधर उधर हो जाओ। मैं इस बिचारी देवी स्वरूपा तपस्विनी देवी को थोड़ा बहुत धीरज बनाऊंगी। हे स्वामिनी, आपके समान तेजस्वी नारी को अपार दुख में इस तरह डूबा हुआ देखकर मैं बड़ा कष्ट पा रही हूँ। मैं राक्षसी भले ही हूँ, पर हरि के चरणों में मेरा असीम अनुराग है। मैं अपनी भरसक सेवा से आपको संतुष्ट करूंगी। मैंने एक सपना देखा था स्वामिनी, कि रामचंद्र जी लंका को विजय करके आपको ले गए हैं।
4: अरे न जाने कब क्या होगा त्रिजटा, परंतु ये तो निश्चय है, एक मास के अंदर ही वो दुष्ट मेरे प्राण हर लेगा। इन आंखों से मैं अपने जीवन धन को फिर कभी न दिख सकूंगी।
3: अपने मन को तनिक भी छोटा ना करो स्वामिनी, मेरा भोर का सपना कभी निरर्थक नहीं जा सकता।
4: हे माता, तुम जब इतनी दया दिखला रही हो तो मेरे लिए एक चिता भी बना दो। मैं ये देह त्याग कर अब अपने पति के हृदय में निवास करना चाहती हूँ।
3: अरे नहीं स्वामिनी, आप अपना मन यूं छोटा ना करो।
4: नहीं माता, तुम चिता बनाकर मेरा परम उपकार करो।
3: हे सुकुमारी, अभी ये संभव नहीं है। हम भला रात के समय आग कहाँ पाएंगी? आप धीरज रखें, मैं कल कोई ना कोई उपाय सोचूंगी। अच्छा, तो मैं भी अब घर चली जाती हूँ। आप विश्राम करें स्वामिनी।
4: विश्राम? विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर विश्राम का ना आग मिलेगी और ना मेरी पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे सुलग रहे हैं, एक मुझ पर भी गिर पड़े तो सारी पीड़ा ही समाप्त हो जाए। पावक मैं ससि सवत न आगी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुने ही विनय मम पिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समान।

0: प्राणनाथ की अंगुली में पड़ी रहने वाली ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या ये कोई और मुद्रिका है? नहीं नहीं, ये तो वही है। इस पर उनका नाम भी अंकित है। तब क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पर ब्रह्म त्रैलोकेश्वर तो अजय है। माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। फिर ये यहाँ कैसे आई? इसमें क्या रहस्य है?
1: भगवान श्री रामचंद्र की माया अपार है देवी, उसे कौन जान सकता है?
0: कौन? अरे तुम कौन हो? मेरे कानों में अमृत खोलने वाले, तुम अपना रहस्य क्यों नहीं बताते?
1: राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी।
0: क्या कहा? नरवान रही संग कहो कैसे?
1: माता, आपकी खोज में श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपासर पहुंचे। वहां मैं और सुग्रीव उन्हें मिले। आपने हमी लोगों को देखकर पुष्पक से वस्त्राभूषण फेंके थे। वहीं सुग्रीव और राम जी में मैंने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता करवाई। बाली को मारकर श्री राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने आपकी खोज में बानर दूत चारों ओर भेजे, जिनमें से मैं यहां तक आने में सफल हुआ।
0: हे तात, विरह जलधि में डूबती हुई दुखिनी के हेतु तुम नौखा बनाए हो। हे पुत्र, अब तुम मुझे देव लक्ष्मण और रघुनाथ जी के समाचार सुनाओ। चित वाले रघुकुल तिलक ने मेरे प्रति ऐसे निठुराई क्यों बरती है?
1: हे माता, जगत के नाथ श्री राम जी भला निठुर कैसे हो सकते हैं?
0: हे नाथ, आप तो ऐसे कोमल चित के हैं कि अपने दास दासियों तक को भी कभी प्रसन्न नहीं देख सकते। फिर आपने मुझ दुखनी को ही इस प्रकार क्यों बिसा रखा है? हे प्राणनाथ, क्या तुम्हारे श्याम सुकुमार शरीर को मुझे नाकों से फिर कभी देखने का सौभाग्य मिल सकेगा?
1: माता, आप अधीर न हो। राम जी एक क्षण के लिए भी आपको नहीं बिसार पाए। मैं सच कहता हूं, उनका दुख आपसे दुगना है। लक्ष्मण जी भी यूं तो कुशल पूर्वक है, पर आपके दुख से उन्हें भी अपार दुख है। विश्वास रखें, श्री राम जी दुष्ट दशानन का वध करके शीघ्र ही आपके पास आएंगे।
0: क्या श्री राम जी ने मेरे लिए कुछ भी संदेशा नहीं दिया?
1: ऐसा मत कहे माता। कहो राम वियोग तब सीता को।

0: सकल भय विपरीता नवतरु किसले मनहु प्रसानु काल निशासम निस ससि भानु कुबले विपिन कुंत बन सरिसा वारिद तपत तेल जन बरसा जीहित रहे करत तेहि पीरा उरग स्वास सम त्रिविद समीरा कहे उते कछु दुख घटी होई काही कहूं यह जान न कोई तत्तु प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रस इतने ही माही माता आप धैर्य धारण करें और अपने सेवकों को सदा सुख देने वाली श्री राम का स्मरण करके अपनी ये कातरता छोड़ दें। ये राक्षस पतंगों के समान शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के प्रखर बाणों की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। हे माता, मैं रघुकुल नायक की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आपको इसी क्षण यहां से ले जा सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा प्रदान नहीं की है। हे अम्ब, विश्वास कीजिए, केवल कुछ ही दिनों की बात है, तीन बंधु दयानिधि सेना समेत यहां आकर राक्षसों का संहार करेंगे।
1: हे पुत्र, तुम्हारी ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर भी मेरा मन शंकित है। भले इन पर्वतों जैसे लंबे चौड़े महाबलशाली राक्षसों से क्या प्रभु जीत सकेंगे? अरे, हनुमान जी ने अपना विराट रूप उद्घाटित किया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। इनके इस रूप को देखकर मुझे विश्वास होता है कि श्री राम जी अवश्य विजयी होंगे।
0: हे माता, वैसे तो हम बंदरों की बल बुद्धि बड़ी साधारण सी है, पर विश्वास रखिए कि प्रभु की कृपा होने पर एक नन्हा सा सर्प भी अति विशाल काय गरुड़ को खा सकता है।
1: हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो, रघुनाथ की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे तात, तुमने यहाँ आकर मुझे परम सुख दिया है, तुम्हारा कल्याण हो।
0: माता, मैं धन्य हूँ, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं।
1: जाओ तात, सुख से मीठे फल खाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।

0: अपने पुत्र अक्षय कुमार तथा अनेक योद्धाओं का संहार करने वाले वानर के ऊपर अब तो रावण को भयंकर क्रोध चढ़ाया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाबलशाली इंद्रजीत मेघनाद को आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से मेघनाद अनेक महाबलशाली योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। युद्ध में मेघनाद का रथ टूट गया। इससे मेघनाद और उनके साथियों के क्रोध का वारापार नहीं रहा। सब के सब एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, किंतु महावीर ने राम कृपा से एक एक के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान के प्रहार से इंद्रजीत को भी क्षण भर के लिए मूर्छा सी आने लगी। अंततः मेघनाद ने उनसे माया युद्ध करना आरंभ किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बाण कपि कह तेहु मारा, परतिहु बार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मुरछित भयो, नाग पास बांधे सि ले गयो। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां देव दनुज नर किन्नर सब हाथ बांधे खड़े थे। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और बोला,
1: कवन तय कीसा कहके बर घाले से बन खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही मारे निश्चर के ही अपराधा, कही सड़ तोई न प्राण कहीं बाधा।
2: सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और शेष नाग जिसकी आज्ञा से धरती अपने शीश पर धारण किए हुए, जिन्होंने क्षण मात्र में ही शिव जी का धनुष भंग करके तुझे और तेरे समान दुर्मति राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया था, और जिनकी अर्धांगिनी को तू छुरा कर लाया है, हे अधम, मैं उन्हीं समर्थ राम का सेवक हूं। घूमते घामते कुछ फूक लगी तो फल खाने लगा, अरे अपने स्वभाव वश दो चार पेड़ मुझसे टूट गए, और जो मेरे भोजनानंद में बाधक हुए वे मारे गए, इसमें मेरा क्या दोष है।
1: अरे कुटिल कत, तू कदाचित मेरे प्रभाव को अब भी नहीं समझा। देख, मेरे इंद्रजीत पुत्र ने तुझे क्षण मात्र में ही बांधकर पटक दिया है।
3: हे महाराज रावण, तुम्हारी शक्ति और प्रताप से मैं परिचित हूं, और मुझे अपने बांधे जाने की तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बंधकर भी मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं।
1: इस प्रकार बंदी होकर तू अपने स्वामी का क्या भला कर रहा है बंदर।
3: हे दशानन, मैं तुमसे सविनय प्रार्थना करता हूं कि अपना अभिमान छोड़ दो, जिसके कारण महापंडित होकर भी तुम मेरे प्रभु की लीला को समझ नहीं पा रहे हो। हे वीर, तुम अपने परम पवित्र ऋषि कुल की तनिक तो लाज रखो। ये मत भूलो कि जिनकी सती पत्नी का तुम हरण कर लाए हो, उनके भय से देवता और राक्षसी क्या स्वयं काल भी थर थर कांपता है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान।
1: कोई है, इस दुष्ट की गर्दन उतार लो।
4: हे परम प्रतापी, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, आप ऐसा पाप न करें।
1: तुम्हारी यह मंत्रणा मुझे स्वीकार है विभीषण, मैं अब इसका वध नहीं करूंगा, वरन इसकी अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेजे देता हूं। बंदरों की अपनी पूछ पर बड़ी ममता होती है,

0: उलटि पुलटि लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी।
1: हे माता, आपके चरणों के प्रताप से मैं लंकेश को उचित शिक्षा देकर आ रहा हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मुझे चिन्ह स्वरूप अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे अपना कोई चिन्ह देने की कृपा कीजिए।
2: हे पुत्र, श्री मेरा चूड़ा मणि तुम लेते जाओ। इसे देखकर मेरे नाथ संतुष्ट हो जाएंगे और कहे हो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदो संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। कहना हे नाथ, यदि आप एक मास के भीतर मुझे लेने के लिए ना आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी।
1: हे माता, आप अपने मन को इतना छोटा न कीजिए, धैर्य धरिए।
2: हे पुत्र हनुमान, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? प्रभु कृपा से तुम आज आ गए तो मुझे जीने का कुछ सहारा मिल गया है। तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है, पर अब तुम भी जा रहे हो। मेरे लिए वही दुखदायी दिन और वही प्राण लेवा रात फिर से आ गई।
0: जनक सुते ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दी। चरण कमल सिर नाई, कपि गमनु राम पहिंकी। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत आदि से सब कथा कही। उसे सुनकर परस्पर प्रेमवश मिलते हुए स्वामी और सेवक दोनों ही भाव विभोर हो गए। और कुछ समय बीतते न बीतते वानर सेना लंका की ओर प्रयाण करने लगी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ਆਸ਼ਿਕ ਨਵਜ ਦਿਖਾਵੂੰ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਕੋ ਰਿਧਾ ਆਮ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਆਓ ਸਤਿ ਨਾ ਕਾ

நப்பயிர் வைத்த முலாம் பூர்ணமைத்தமிழே அவிநாசி காசி கொண்ட

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: एक ओंकार,
1: गॉड इज ओनली वन,
0: सत नाम,
1: हिज नेम इज ट्रू,
0: कर्ता पुरुष,
1: ही इज द क्रिएटर,
0: निर्भय,
1: ही इज विदाउट फियर,
0: निर्वैर,
1: ही इज इनइमिटेबल टू नन,
0: अकाल मूर्त,
1: ही नेवर डाइज,
0: अजूनी,
1: ही इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ,
0: सैभंग,
1: ही इज सेल्फ इलिमिनेटेड,
0: गुरु प्रसाद,
1: He is realized by the kindness of the true Guru.
0: Jap
1: repeated.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।